0: ये नो ऐताय हवारा ते और वो घटुरे बे ते यार घटुरे यारा तू बे प्रो हावी बे रा तू घटुरे बे मोत्रा रा उतारो ऐतारो आ तू ते दिया हो ये ताता ये मुताता हो उन्होंने ये तो यारा तो दिया दिया तो मैं ते वेर हो बे तो रा तो मुंह हो रो तो बे ते मुंह पे ओपनी नोने रा पे ही हमें उन्हें ते कम हुई हरे नो आए ए वही ते ता तो ना ते मरी ते आप में देने ना दराते सामतारा ना ते ये हिनी पानी और एजी पीटी ना ते रातरे मरी ते वो तवी तरह तो उड़वे राते नहीं है वो उन में वही ते वो ड्रामू में मतलब वो प्रॉब्लम है ड्रामू माना रे तवी तरह वेरा ये ऐसे ना मैं ऐसे पे एक बार राते रे पहरू ही नहीं यहाँ पे मिचे तो तातो मुंह पर रे वन ऐसे यो है ना मैं पहरू आ रही दाव राते रे रा मैं ना ते आ ना तू ये ते नहीं चाहता रा तो राव ए हुपे पाओ ही बार आ हुआ यार तो नु हुआ नो ता पे मैं नॉन में वही तेरा तो इतनी मुनी रही थी ऐता मैं की मैं चाहिए वही तेरे माना तानु आ तो हुआ हाँ पाबित बितो वो इन्हें सिरा प्रीमियर ना रो ही मैंने ना नु नु आ रहा है अंजेलो यार नु ते हावरे हाँ ना अंजेलो तो रही मैंने आ रही हूँ यार नु ते हावरे मरुरु फावरा मैं की
1: Venez pour nous parler de l'actualité locale concernant ce processus d'accession à l'autodétermination qui a été co-signé hein, par les autonomistes et les indépendantistes. Il y a Anguille Souroche, s'interroge-t-il. Et concernant cette affaire du douanier, ex-douanier, hein, soupçonné pour le blanchiment d'argent, c'est papa qui le dit, et bien voilà, c'est pour ça que pour lui, c'est important qu'il y ait des contrôles également dans la fonction publique, notamment parmi les forces de l'ordre. Elle nous dit, eh bien, ils sont pas tous impliqués dans des affaires comme celle-ci, mais il y en a certains, donc c'est pour ça qu'il faudrait que tout le monde soit à la même enseigne. Ce n'est pas parce qu'ils portent le grade qu'ils ne doivent pas être contrôlés. Donc il faut qu'il y ait des contrôles également effectués sur les forces de l'ordre, nous dit-il. C'était Yann Inu Natato, un autre appel au standard de la première. Yaorana, bonjour. Allô?
2: Ouais, bonjour le copain.
1: Hey, bonjour le copain, ça va?
2: Ah oui, ça va, attends, moi qui n'en pense pas encore plus, c'est une tirée du cocher.
1: Ah oui, c'était bien.
2: Sinon, Maki, il reste 4 jours, après ça, vendredi, Maki.
1: Oui. Les enfants, ils sont retournés à l'école.
2: Ah oui, ils sont contents, les enfants, mon mari, mon copain. Les gars, ils sont contents, carrément. Maki, qu'est-ce que je voulais. Là, c'est bon, c'est bon. Bonjour les copains, bonjour les copines. Chauffeur, chauffeur, dragueur, dragueur, les copains en cours, la Polynésie première. Et nous, on va, patron et puis patronne. Et puis, on va oublier aussi les papiers et les mamies. Sinon, Maki, faites tout dans ton travail. Les chauffeurs, attention sur la route. Je vous aime tous. Bisous, bisous, à demain. Maki, un peu de musique.
1: Oui.
2: Hey, va tout droit.
1: Hey, va tout droit. Voilà,
2: hey, va tout droit. Voilà. Ok, Maki, merci.
1: Hey, va tout droit. Marie-Louis Nignor, à moi, faites tout dans le travail. Tetea Ninura Tato, un autre appel au standard de la première. Yaonana, bonjour. Allô, allô. Allô. Oh.
3: Hey.
1: Hey, Yaonana.
3: Yaonana. Hello, hello.
1: Teria.
3: Oya, Mike. Maruru, tu as tout fait, là, j'ai vu. Ah, c'est mort, là. Hey, yo, oya. Ata Mikey, hoy ni no mai tu on ni te pro api ta ta tu an uni pa ti amu ra ti ta ni hui ra ti re ta pu ra hui ra ti re a pro ti a aro la tu te ni dai che amu e har me bai une tu ta pu bai tu ta tu ti a ale ane ta tu i te ti a ma ra ore ra pa e a do ta tu e pi ti pai huru mai ta u ji ora e a te ra to ha ma ra ma mo mai te ra ini pay rida tarato ina pay pay ti me anira ta are ani ta ti yamara are ra pa e parani no ta to are ani ta ti yamara are ra pa e to no mi so ale ta to trati te wi wi ra na mo no no ti pe to i mo no no mai e papu me te ya u ro ti ti ha na ora e ta wi wi ra ti re che o na ta wi ta na ta na ra ta ira are o ta tu ti yamara tera e pikina pumu te o fono tia ra o tapura e papu mai te hoa e whae parani nō pai a tātua re rā o tolomi, ki o tā whiwi, te whiwi ke rā, no te mea te pau e parau mea o te tāpura o rea whanotia e, ane tātui tia mara whae parani nō tātua, me papu mai te hea au e, e mana te tia mara, no te mea mea rei te tāta te maohu e tera, te inga roa hau e whae rutu i whātere rā o te mea parani. E ne hoa e tātou whae parani nō, e tera tera rei rei hale jo, mai te hoara tui tia mara mea au. Te paura e nā oia mai e hale tātui tia mara whae o tono mishi no tātou, me papu me te e mai ki o.
4: Always enjoy playing a little Richard Cheese now and then. Southside Steve here with you on a Monday morning. It's a brand new day. We're finishing up our If, Ands, or But songs. And we started this last set off with Blood, Sweat, and Tears doing And When I Die. Heard a slightly shortened version of Yes doing And You and I. Another one from the Beatles, Yay, and I Love Her. And then we got into the butt songs. Redbone with But It's All Right. We heard from the Blues Traveler, But Anyway. Emmylou Harris from Oh Brother, We're Out There motion picture soundtrack. Didn't Leave Nobody But the Baby. We heard Talking Heads doing Nothing But Flowers. And finish off there with Richard Cheese from The Sunny Side of the Moon, Baby Got Back. Actually, I think I'm more of a leg man than a butt man, but hey, I digress, and I'll stay quiet from that for right now. Let's see here where we're at. Maui Friends of the Library. Maui Friends of the Library is an all-volunteer organization committed to supporting Maui County libraries as well as community education and literacy. Please help by volunteering to work in one of our used bookstores in Kahului, Kihei, or Pu'unene. Just a few daytime hours per week will help serve libraries and the Maui community, and you'll meet great people, and it's fun. If you'd like more information, visit bookstores, volunteer, or become a member. Okay, yeah, you can just visit the bookstores, or you can volunteer or become a member. You can go to mfol.org. Yeah, friends of the library. Good people to be friends with. Okay, 8:30, where are we going? We're going to do some life songs, just for fun. I got another Talking Heads one right here. Nope. We're going to start with the band. Life is a Carnival.